पंचम हरख दिसाग सुनावहे बंगालम मद माधव गावहे ललत बिलावल गावही अपनी अपनी पहात।

प्रबल चंड कौ साकु भारा खौ खटौ पहरा नत गाए अष्टमाल कौ सग संग लाए पुन आयो हिंडोल पंच नार संग अष्ट सोत उठे तान कलोल गायन तार मिला बही ते लंगी देव करी आई बसंती संदूर सुहाई सरस अहिरी लै पहार जा संगलाई पांचो आर जा सुरमानंद पास कर आए चंद्र बिंब मगलन सुहाए सरस बान ओ आहे बिनोदा गाव है सरस बसंत कमोदा अष्टपुत्र मैं

तत्र चक्रवर्ती चतार चक्रभूते स्वयं सुमं सर्वदा संयुक्ते दुकान प्रणासे दयाल स्वरूपे सदांग संगे अपांगांग विभूते देखते को फतेह नसरत वे दृंग्याप तज आज नाम गुरु गोविंद सिंह श्री अकाल पुरुष सहाय दरबार में तिरु दरबारा सच खंड वसे निरंकारा।

जय गुरु गुरु निवास अंतरजामी सच्चे पातशाह जी महाराज धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज आप जी दे पावन पवित्र स्थान तक सचखंड दरबार दी हाजरिया पड़दे होए कीर्तन दे सत्काव जो संगता वालों बिनत माया हाजर हुए जिस खजाने विच माया हाजर कीते सो सो खजाने भरपूर करना नाम दान गुर सिखी वाला जीवन मुस्कान दे अरबता स्नेहा सामन सा संपूर्ण करनी यात्रा सफली करनी।

मधुमुख एक पाए डांड न बहत है, मानव फनिंद कते बनेद नेद के कहत है। करत घोर दामनियन एक भाव करे हुई करत है, चंद्रमा ते सी सोना राजा भव भूमुख शिव से तपस्याद ब्रह्मा से पश्चान अन्न।

एक पॉइंट हाट सदा बन में रहत ब्रित है। एक सांगी कहूँ जो किया पर आगे बने कब हूँ संन्यास फेस बने कहूँ बैठ लाए तारी कहूँ लोभी लगावे वाली कहूँ दंड धारी हो के लोग नाचत है ना जन सो ज्ञान के भी हीन कैसे ब्रह्म लोग पावई पंच बार की तरफ पुकार।

फर मंग न जन मंग न जातंग न मितरंग न सतरंग न पितरंग न मातंग न कामंग न धामंग न बुतरंग न विवेकंग जोनि स्वरूपं सदा सिद्ध नहीं जान जाई कछु रूप रेखं कहां वासता को फिर कौन भेखं कहां नामता को कहे मैं नावे न रोगं न सोगं न मोहं न माता दंग द्वेखं फेखं जोनि स्वरूपे नमो परे यं परा परं प्रज्ञा प्रकाशीय चेदं छयाद अद

छंद अगंज आद देव है अभंज भंज जानी अभूत भूत है सदा जानी अजमानी है जानी है देव देव है सदा भेव भेव देव देव है सदा वृद्ध है सदैव सर्व मात्र है वृद्ध सदैव सर्व अनाथ नाथ नाथ है भंज भंज ना सदा अगंज है अगंज है सदैव सदा वृद्ध अगंज है सदैव सर्व वृद्ध अनुरूप रूप स्वरूप है अजज ते जमानी है सदैव सिद्ध सिद्ध सदा प्रतापनी सदैव है सदा प्रताप रंग रंग रूप है न रूप रंग रंग है रूप रंग रूप है भूत ब्रह्म रूप है अदंत है अभूत ब्रह्म फिक है न दाद मात जाद है न पाद चेहन दरण है देव रसे सवेग है सदीव विश्व भरण रसे सवेग है सदीव विश्व भरण है विश्वंबर विश्व नाद है विश्वेग विश्व भरण पर जिमी जहान के विख सदीव घर जिमी जहान के विख सदीव करम परम अद्वेख है अभेख है अलेख नाद जानी है सदीव सर्व धर्म विषय ध्यान मानी सर्व धर्म विषय ध्यान मानी जिमी जमान के बिखे समस्त एक ज्योत है न घाट है न पाड़ है घाट बाड घाट है न पाड़ है घाट बाड होत है न हान है न बान है समान रूप जानी है मकीन हो मकान रूप प्रमाण तेज बानी हो मकान रूप प्रमाण तेज बानी है न दे है न गे है न जात है न पात है न मंत्र है न मित्र है न तात है न नामत है न अंग है न रंग है न संग है न साध है न दोग है न दाग है न द्वैख है न देह है न सिंह है न स्यार है न राव है न रंग है न मान है न राव है न साग है न संक है न जश है न गंधर्व है न नर है न नार है न चोर है न साव है न साह को कुमार है न गे है न देह को बनाओ है न छल है न छिद्र है न छल को मिलाओ है न जंत्र है न मंत्र है न तंत्र न रेख है न रूप है न जंत्र हल है न चित्र है न छाया को मिलाओ है न राग है न रंग है न रूप है न रेख है न कर्म है न धर्म है अजन्म है अभेक है ख्याल खंड रूप है छेद है पवित्र है भोग है न सोग है रंग है संग है साधन प्रयारा है पवित्र है पुनीत है प्रमात है न सीध है न सोज है न घ्राम है न घाम है न लोभ है न मोह है न क्रोध है न काम है न देव है न दैत है न नर को स्वरूप है न छल है न क्रोध है भेक है न दुई है न द्रोह

बेअंत है अनंत है अनंत तेज जानी है वो विजयन सदा तेज तेज मानी है आनंद व्याप्त है तेरा रूप देखी है तो है दाग रूठे पताप देखी है पताप देखी है न कर्म है न भ्रम है न धर्म को प्रणाम है न जप रहम है तंत्र है को मंत्र लाओ लाओ है न चल है न चित्र है न चित्र लाओ रूप चल भंग है नंग है वो सब जो पहले बोलता है राम है न क्रोध है न लोभ मोकार है न आद है न गाद है न व्याद को विचार है न रंग रंग रूप है न रूप रेख रार है न भाव है न भाव है न दाव को प्रकार है दाव को प्रकार है जात भी न रात भी करंत से जात भी न रस पति करंत से वनस्पति जब दस जन्म मरण बली नरे साधना था मार बली सो धर्म कर आत बली मार बली सो धर्म कर आत बली जन्म मरण न तंत्र जा को आत बुरा धर्म प्रार नरस की बली है बस सब और मैं निर्धार साधना तात जा को मंत्र मातना मित्र सर्व ठार रहे और बिखेर

जय जय होसी मखा सुन मर्दन साध ब्रदर संतुष्ट हंसे कारण करी ली गर्व कही ली जोत जाती ते तंत्र करते अस्ताद जमकण सुत्र जमकण दंकण आस्प्रते की दे सुध गते जय जय होसी मनाद मते नाद मते कचरा सुर मारण नरक निवारण पद कल धारण एक भरे बावान पे हुंधरां दुन शेक भंडे थांडे अनंधन काल कटे चंद्रानन चारे नरक ने जय जय हो सीम खा सुर मर्दन धूम्र विधुंसन आद कथे चक्र दन दान वर्दन बिटाल बद्रे सरदार विफर कंदुर जन धन खण तुले मखा कथे

जात पात नहीं भेद वर्ण सत्रु मित्र दो एक सार अक्षय स्वरूप अब चल पार। जानी न जाय जह रू हे कहे नाम ताज है कवन जात जय सत्रु मित्र नहीं पुत्र भ्रात। करुणा निधान कारण स्वरूप जय चक्र चयन कर्म काल सब जीव जंत की करत पाल। सिद्धंग स्वरूप बुद्धंग पाल जुद्धंग अनूप जय रूप रेख नहीं रंग राग अंशिज तेज अनभिज दाग। तुरंत जय नेत नेत निश नु चरंत पायो न जाय ता उदार। कई कुटर उतर चुके आ द्वार कई वेद व्यास ब्रह्मानंद जय नेत नेत

प्रकाशी है, काम को कुनिंदा है, के खूबी को दिहंदा है, गनीमन गरिंदा है, के तेज को प्रकाशी है। काल हो के काल है, के शत्रुन के साल है, के मित्रन को बोखत है, के वृद्धा की बासी है, जोग हूं को जंत्र है, के तेज हूं को तंत्र है, के मोहनी को मंत्र है, के पूर्ण प्रकाशी है। रूप को निवास है, के बुद्ध को बुद्ध हूं का घर है, देवन को देव है, निरंजन अभेव है, अर है, जान जाल विश्व को भरण है, गया पदा को हरण है, शोक को करण है, पार पार अवार हूं, हव सिहल विद्या पूर बिना पार पावया, सत्य नाश है, देवन को दिन अभेवना धीन है, कटैया जिन जा के देव महादेव के देवनाथ, भूम के भुजिया है, मुह या महाबाल के महासाज हूं, के साजा महाजोग हूं, के जोग है, धरैया ध्रुम छाल के, कामना के कर है, के बुद्धता को हर है, के सिद्धता के साथी है, के काल छीर कैसे छीरा वो छाज के इंद्र के पारसी पलाऊगढ़ रूपा के श्रीरामपुर सूरसी सुरंगाबाद निगुड़ चांदूसी चंदगढ़ की रत्ती हरी रही मालदीसी फूल के फटीसी गलास पलाऊगढ़ कांसी बुरसी कलसी सुरंगाबाद डकसी हुई उत्साह हिमांशी हिमालय के तहाँ कसी हलाय पाने रसी हिंद कसी हराजी और देख मोहिया चंदन सी चंपावत चंद्रमा सी चंदा की चंदन सी चंदा गढ़ जो जो ही चहल सी कासम करंग दर पका की सी बिरंदा वद की रंग ते हर की लोजी या ने सोल की रह ते हर की लोजी या ने सोल की फरा सी फिर की फरा सी सी के तुरंग की मरा चर मान के मरा सी तेरे के गीत गाई जो ता हर भर तेरे कंधा जी गोर रही खरी घर जा बचा दे पौन के लाह रुका कर नाम जारी ये तह के लाह रुका कर नाम जारी ये तह पूरब पलाओ काम रूप कमाओ सब ठावर मुकबिर मर्द जाओ जहां जाई ये तह में पूरन जहां भी चंद्र भी चंद्र भी चंद्र भी चंद्र भी चंद्र भी चंद्र भी चंद्र भी चंद्र भी चंद्र भी चंद्र भी चंद्र भी चंद्र भी चंद्र भी चंद्र भी चंद्र भी चंद्र भी चंद्र भी चंद्र भी चंद्र भी चंद्र भी चंद्र भी चंद्र भी चंद्र भी चंद्र भी चंद्र भी चंद्र भी चंद्र भी चंद्र भी चंद्र भी चंद्र भी चंद्र भी चंद्र भी चंद्र भी चंद्र भी चंद्र भी चंद्र भी चंद्र भी चंद्र भी चंद्र भी चंद्र भी चंद्र भी चंद्र भी चंद्र भी चंद्र भी चंद्र भी चंद्र भी चंद्र भी चंद्र भी चंद्र भी चंद्र भी चंद्र भी चंद्र भी चंद्र भी चंद्

प्राण सखाई। हर कीरत हमरी रह रास रहाव, हर जिन के वड भाग वडेरे, जिन हर हर सरदा हर प्यास, हर हर नाम मिलै तृप्त आस है मिल।

तेरा कार्य सब सवारना, सब ना गला समरत स्वामी सो क्यों मनो विसारे। कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले, साचे साहिबा क्या नाही घर तेरा, घर ता तेरा सब किछ है जिस दे सो पावे, सदा सिफत सला।

हम सब जलाए हम सब जलाए हम सब जलाए हम सब जलाए हम सब जलाए हम सब जलाए हम सब जलाए हम सब जलाए हम सब जलाए हम सब जलाए हम सब जलाए हम सब जलाए हम सब जलाए हम सब जलाए हम सब जलाए हम सब जलाए हम सब जलाए हम सब जलाए हम सब जलाए हम सब जलाए हम सब जलाए हम सब जलाए हम सब जलाए हम सब जलाए हम सब जलाए हम सब जलाए हम सब जलाए हम सब जलाए हम सब जलाए हम सब जलाए हम सब जलाए हम सब जलाए हम सब जलाए हम सब जलाए हम सब जलाए हम सब जलाए हम सब जलाए हम सब जलाए हम सब जलाए हम सब जलाए हम सब जलाए हम सब जलाए हम सब जलाए हम सब जलाए हम सब जलाए हम सब जलाए हम सब जलाए हम

0: शरीर का नाम हो चुका फिर बताइए मन मुझे तलाता है ज्ञान के साथ और चल तो सागर में
1: स्वामी